0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6ठे चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी मिदाइरा को हराया। वहीं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के इस सम्मेलन का विषय है भारत की वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। नई दिल्ली में 3 दिन के सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित अन्य देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान पर चर्चा में योगदान देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगे। मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अमरीका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को अमरीका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बड़े बैंकों को भी कानून का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पूरे अमरीकी वित्तीय तंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इसके प्रभाव से 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांगो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों तक फैल चुका है। ये प्रकोप बंडी बुग्यो वायरस के कारण फैला है और इसका अभी तक कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4वां T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। उनका अगला मुकाबला जर्मनी की येवोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्नौ मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। डबल्स में, पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by VC Pramod.

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
2: और हमेशा हमारी फिक्र करना, वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
1: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
2: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, जागरूक रहिए।

नली सजा के रखना फिल्म ने गीत को नचमांग खनासो नमना वन बाबुल सुप्रिया और श्रीनिवास नीर गवा गीत तो नसीमना जोधा अकबर फिल्म ने गीत को गमाते हैं वन जावेद अली नीर गवा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवस के सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आज खुजली में

0: अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं जो उसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सिटी ग्रांट की समाधान दीदी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली के जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
2: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंभात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीन फील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
2: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसकी तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: धोलेरा स्मार्ट

0: उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
1: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदारा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की येमोल ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के आर्मा मर्पे को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अन्य प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्ता का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार, त्योहारी सीजन अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने के विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह न मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टोक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेजिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, NEET JEE की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास AI ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। BIMSTEC देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी साथी ऐप।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन का विषय भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध है।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और कल राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृहमंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। चीन के संबंध में विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। तन्वी का अगला मुकाबला जर्मनी की योवोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराया और दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी साथी ऐप।

ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन पोशाकों को डिजाइन कौन करता होगा, कहानी और पटकथा के अनुरूप इन वेशभूषाओं को कौन व्यवस्थित करके हीरो हीरोइन के लिए तैयार करवाता होगा। ये काम कॉस्ट्यूम डिजाइनर का होता है और आज एक बहुत ही मशहूर और महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार।

फैशन बना दिया था। कुछ फेर बदल के साथ आज भी इस तरह की पोशाक चलन में नजर आती है। तो फिल्म वक्त का साधना पर फिल्माया गया ये गाना सुनिए।

0: Ramesh Gokhale.
1: Steve Sankar.

0: बात मतलब
1: जिन्हें
0: ये,
1: पर्दे पे बचपन से
0: हाँ
1: देखा
0: जी
1: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या बात है।
0: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: मैं उनके साथ काम किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
1: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी अपने स्क्रीन
0: हाँ
1: शेयर
0: जी
1: किया
0: हाँ जी
1: है,
0: हाँ जी
1: उनसे क्या कुछ, कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा
0: एक तो
1: किस्सा।
0: हाँ

बैटूंगा, वही एक्टिंग सीखता रहूंगा। बट उस समय मेरा बेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछे तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं, तो बेहतर है कि। तो ये दो कारण थे। अब बड़ी अच्छी फिल्म उन लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से बहुत प्यार से हमने ये शूट किया, और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने, बट ऐसा

0: मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं

इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और के श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया।

स्टॉर्म ओवर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड वेस्ट राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड कराईकल कैन एक्सपीरियंस थंडरस्टॉर्म्स।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे का ये गीत, शब्द शकील बदायूनी के थे। कृपया से दोबारा सुनिए, शब्द शकील नोमानी के थे और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की थी।

फिर हुई आवाजें थी किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हर जगह ही तो कहीं दिल की धड़कनों को आवाज दी। और आपने कुछ गानों के बोल लिखे हैं जो हमारी लिस्ट में आज शामिल भी हैं। मैंने एक श्रोता लिखती है कि आपने तो आज पूरी खिचड़ी बना दी है और हमें तो कोई नाम याद नहीं आ रहा है। फिल्में जरूर देखी है लेकिन उम्र का असर है शायद। चलो छोड़ो, आज गाने सुनाना आपको और सभी को नमस्कार देते हैं भी। हमने खिचड़ी नहीं पकाई, हमने पुलाव बनाया है जिसमें चावल बिल्कुल अलग अलग अलग अलग है। ध्यान से देखिए तो सही हमारी डिश क्या है। और मैं एक शब्द लिख दी कि मेरे पापा रेडियो बहुत ही चाव से सुनते थे, खासकर पापा।

ये तो हरी भारत स्वागत योग्य है और आप लिखते हैं कि कुछ नाम गीत और व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ये भी भांति भांति के नामों से पिरोए हुए संगीत में सुरीला सफर का आज आपको इंतजार है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज नाम पर आधारित कार्यक्रम होगा, इसमें भी व्यक्ति दो दो विचार चलते हैं। कोई कहता है कि नाम में क्या रखा है, गुलाब का कुछ नाम रखने पर भी वो खुशबू तो देगा ही, तो कोई कहता है

हमने आज आपसे जानना चाहा है कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का बहुत फिल्मों में नाम विजय था, तो ये नाम बड़ा अच्छा लगता था हमें। या चांदनी, ये नाम भी बहुत फेमस हुआ। तो आप की फिल्म जो फिल्मी किरदार हैं, उनमें आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है? कई बार आपका नाम उनके नामों से मिलता जुलता भी हो सकता है, इसलिए भी हमें वो नाम पसंद आता है ना। फिल्मों में नाम विजय था, तो ये नाम बड़ा अच्छा लगता था हमें। या चांदनी, ये नाम भी बहुत फेमस हुआ। तो आप की फिल्म जो फिल्मी किरदार हैं, उनमें आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है? कई बार आपका नाम उनके नामों से मिलता जुलता भी हो सकता है, इसलिए भी हमें वो नाम पसंद आता है ना।

मन में आदर्शों की साक्षात प्रतिमूर्ति बन गया और जब नाम के अहंकार का विसर्जन सर्वनाम यानी मैं से उठकर हम या तुम पर आता है तो वो समष्टि से जुड़ जाता है। नाम तब तक मात्र एक कोरी स्लेट रहता है जब तक कि विशेषण उसे अपने रंगों से नहीं भरता, क्योंकि नाम की पहचान उसके गुण दोषों से जुड़ी होती है।

Mm-hmm.

आभा समाहित होती है। आज नामों की इस दिलचस्प महफिल में शब्दों से, शब्दों ने मुस्कुराना सीखा है और सुरों ने संवाद करना। सचमुच जब साहित्य की शालीनता में हास्य का रस भूल जाए और संगीत के स्वर व किरदार या मिला उपनाम इतना मशहूर हो जाता है कि लोग उनका असली नाम भूल जाते हैं। समीर खाकर को लोग उनके असल नाम से कम और टीवी सीरियल नुक्कड़ के किरदार खोपड़ी के नाम से ज्यादा जानते थे। इसी तरह कलाकारों को इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपने असली नाम बदलने पड़ते थे या नए नाम मिलते ही वो जैसे ही मैन, बिग बी, गब्बर सिंह, बसंती, ये नाम आपको पसंद आते हैं। बिल्कुल यही सवाल हमने किया था कि कौन से नाम आपको पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज नाम की

बात नहीं, हमें क्या करना है, ये भी जरूरी थोड़ी है कि हमारा नाम किसी फिल्मी चरित्र से मिले। हमने भी पूछा, ऐसा हो सकता है कई बार हमारा नाम कहीं आया हो और हमें याद हो। मैं एक श्रोता को मनोज कुमार का भारत कुमार, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, मोगेम्बू कुशवाहा, ये बहुत पसंद है, और वही एक श्रोता को देव

जमा लोही गाना जो है ये मुझे बेहद पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। और एक श्रोता ने कहा कि पहले एक बार नाम पर ही एक प्रोग्राम हुआ था, याद नहीं। अच्छा, उसमें एक सवाल आया था कि क्या आपका नाम कोई गीत में आता है। अच्छा, ऐसा कोई कार्यक्रम था। वही एक श्रोता का कहना है कि

देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया।

भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर

मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार राष्ट्र को समर्पित किया था। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में 2 सुरंगें हैं जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेना दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज ए भक्त, एज ए नेम गोरी बाबा फॉलोअर, दोनों उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात करते हैं। और ऐसा फिल्म में मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसमें मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी

0: संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: ध्यान से देखेंगे उन पर।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक

ह्यूस्टन वैरक सुनकर इन्होंने 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाने की पहल की और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानकों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और इस वर्ष की जो थीम है दीपा 2026 की, वो है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य पर विशेष ध्यान, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा इस वर्ष का संदेश है।

0: इंसानों के बीच तालमेल वजन और माप में एकरूपता, जैसे 1 किलोग्राम और 1 मीटर का समान माप।
1: बिल्कुल।
0: और इसी तरह से इमारत और जो पुल होते हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित भी नियम होते हैं, तो इन मानकों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और उत्पादों की गुणवत्ता

यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के मानकों पर काम करता है। और इसी तरह से फिर एक और है ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का ही इसका फुल फॉर्म है। ये दूरसंचार और संचार नेटवर्क और डिजिटल

विकास लक्ष्य पर विशेष ध्यान, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा इस वर्ष का संदेश है। एक व्यक्ति उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क देखना, निर्धारित गुणवत्ता

काम करता है। और इसी तरह से फिर एक और है ITU, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का ही इसका फुल फॉर्म है। ये दूरसंचार और संचार नेटवर्क और डिजिटल

0: कपड़ा चुनना है जी। और इसलिए जब अगली बार आप किसी पोचम पल्ली इक्का साड़ी को देखें तो सिर्फ उसके रंग और डिजाइन पर नजर मत डालिएगा, उसके पीछे छिपी उस मेहनत को भी महसूस कीजिएगा जिसमें एक एक धागे को बांधा जाता है, रंगा जाता है, फिर करघे पर बड़ी कुशलता से बुना जाता है। यही तो भारतीय हथकरघे की खूबसूरती है। कपड़ा केवल बुना नहीं जाता, उसमें हमारी परंपराएं, कारीगरों की मेहनत और पीढ़ियों की कला भी बुनी जाती है।
1: सही बात है। और ये जो सपनीली दुनिया है, इसको बुनने के लिए क्या सबसे खूबसूरत साधन है? गीत।

हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये सारी फिल्मों में प्रार्थना के रूप में इन्हें जो गीतों को दिखाया है, आज भी हम बेहद पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति आभार, सम्मान और मार्गदर्शन व्यक्त करना, जो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। अभी लिखते हैं कि स्कूल में

सभी अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो, जो हमारे संबंधी है उन लोगों का सबका अच्छा हो, है ना। और जो माताएं होती जो मम्मियां होती है जिनके युवा शादी नहीं करते, तो वो भी प्रार्थना करती कि भी जल्दी पाना विवाह करना और परिवार बसाना, ये जीवन का एक सामान्य रूपरेखा हुआ करती थी। लेकिन आज जो युवा है वो विवाह करने और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे अनेक कारण हैं दीपू, कि जैसे उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हमने शादी कर ली तो फिर हमारे करियर में, खासकर महिलाओं को, युवतियों को ऐसा लगता है कि हमारे करियर में बाधा आ जाएगी, या फिर हमने इतना बड़ी मेहनत से हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने अपने करियर को इतना

बिल्कुल सही कही। और देखो एडजस्ट करने की जो आप पे बात कर रहे हो ना सोनाली, हम आजकल अपने बच्चों को थोड़ा कम समझाते हैं कि थोड़ा सा आप संभल के चलिए, या थोड़ा सा आपस में एक कोई अगर एक या हम कोई एक दो में से कोई एक में अगर हमने ही पहले थोड़ा सा झुक गए तो कोई

आपकी युवा वैवाहिक जीवन से ज्यादा करियर पर ज्यादा जोर देने लगी। वे मानते हैं कि शादी कर लेने से घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी और करियर खत्म हो जाएगा। अभी कुछ कमा कर पगभर हो जाए तभी शादी तो बाद में होगी। मेरे घर में भी मेरी बेटी 29 साल की हुई है, वो शादी से मना करेगी और नौकरी के साथ साथ एग्जाम भी दे रही है।

0: करने के लिए भी लगभग चार कलर है, उनका पैलेट है एज एन वॉल का, जिसको प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं, और कॉस्ट्यूम डिजाइन जिसको बोलते हैं। तो कॉस्ट्यूम के कलर्स में, और उसी वजह से उनको चार चार कर दिया। प्लस मैंने पूरी फिल्म को 9 भाग में बांट दिया,
1: अच्छा
0: लगभग 9 चैप्टर्स थे, उनको बांट दिया। और ये करने से हुआ ये कि हम कहीं

या नई नई चीजों में जंप नहीं करता, उनको बहुत इंटरेस्ट दिन भर यही करती है। तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी 20 साल से मुझे फॉलो करता है, बिकॉज ऑफ माई मदर। आई कुड एक्चुअली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड द कोर।

मैक्स येट वेरी सिंपल कि वो जो मूलाधार में जो मणि चक्र बोलते हैं जिसको मणि बोलते हैं कि कुंडलिनी का जो मणि है तो भीतर बाहर, और जो अंधेरे में जो ताला खोले वो बिना चाबी के अंधेरे में ताला खोले, अंधेरे ही है ना, आप अंधेरे आँख बंद करोगे तो अंधेरा है। तो इस तरह की कॉन्सेप्चुअली चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समझ की आवश्यकता थी, वो मुझे मेरी अपनी माता जी की वजह से बहुत मिली। प्लस मुझे एक आई फाउंड वन ऑफ द बुक कॉल्ड सारस्वत कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटली बाय समबडी आई मेट, ही रेफर्ड दैट बुक समहाउ। मैं एक बंदे भारत ट्रेन में बैठा था, 6 घंटे का समय था, मेरे पास हाई पाइप बुक थी, मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया। उसके 58वें पेज पे मुझे सासा आने वास्ते चले मिल गया, जो कुंडलिनी जागरण के बारे में गुरु गोरक्षनाथ की 11वीं शताब्दी की लिखी हुई कपलेट से, और वो इतनी सिंपलीफाइड और इतनी गूढ़ और सिंपलीफाइड, सिंपलीफाइड। आई लव थिंग्स विच आर वेरी सिंपलीफाइड।

0: तक खाया है वो, अभी मुझे याद नहीं कौन कि मुझे लगता है कि मैं 17-18 साल तक की उम्र तक भी खाया है।
1: तो लेकिन क्या बात होती थी, घटना क्या
0: तो
1: रहती थी?
0: सी सी विल जस्ट गेट फ्यूरियस एंड शी विल बीट ऑन द माइंड, डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज़ ये मेरी जॉब है ये तो
1: कौन सी गलती आपको अपने तो जिससे मारना पड़ती थी?
0: नहीं आई एक्चुअली कोई कोई सच वो नहीं थी। इंफॉर्मेशन कैसी कैसी पास होती है, इंटरप्रिटेशन होता है ना, कैसे आप इंटरप्रेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्टोरी के आप जो भी इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज होते हैं उसको आप यू वर्क इट आउट। एंड आई टेल यू वन सीन जहाँ पे फिल्म में जो है ना वो महाराज जी को नीचे उतार देते हैं और गोपाल को महाराज जी को उतार देते हैं, आपको जो हमारी हुई है स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल था ही ना उस सीन के अंदर। किसी ने मुझे बोला कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महाराज जी अरोगेंट है, उन्होंने अपने गुस्से में और फिर उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो तुम, सोचता हूँ इस बारे में। तो मैंने शूट पे वहीं पे जाके वो उस पूरे के पूरे उसमें इवेंट में उसको इंक्लूड किया था। अगर आप देखें गोपाल के पास बहुत डायलॉग्स नहीं है, पूरे सिक्वेंस में गोपाल डायलॉग्स नहीं मिलते, वो डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे। वो चूंकि गोपाल को धक्का मार के गिरा दिया इसलिए महाराज जी को गुस्सा आती है और वो फिर गोपाल से ही हर बात पे, अगर आप याद हो आपको वो जब रोने लगता है वो कहते हैं यहाँ पे स्टेशन बनेगा और यहाँ पे कभी सर्विस रूम उतारे तो ही लुक्स एट हिम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज़ ही नोज दैट ही इज मेरे लिए कर रहे हैं। तो मैं उनका साथी, मुझे भाई भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भाई भी बोलते हैं, मेरे लिए कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं। दैट्स हाउ दैट सीन वर्क्स। तो इंटरप्रिटेशन है, अगर आपने इंटरप्रिटेशन को ध्यान नहीं दिया होता मैंने तो शायद वो सीन इतना अच्छा बन नहीं करता, हो सकता कोई भी मुझे क्वेश्चन करता।
1: बिल्कुल।

0: में आता हूँ और मेडिसिन जो है ना, चूंकि हम बिल्कुल इमोशनल पर्सन, मैं अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, यहाँ साइलेंट भी नहीं करता था, पता नहीं किस पेशेंट का किस हालत में कॉल आ जाए, किस व्यक्ति का जान जो ना जोखिम में हो, वो बोल रहे हो, लेकिन लोग कॉल ऐसे नहीं करते थे, सर 2 बजे के सर जो है थोड़ा पेट में गैस बन गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, बोल रहे पेट में गैस बन गया, तो फिर मुझे एकदम समझ आया कि ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, और मैंने अपनी पीक जो प्रैक्टिस थी उस पर चलते हुए मेरा अचानक से एकदम क्लिनिक बंद कर दिया, और तब से मैं वो सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबके मैं फोन पे इलाज कर रहा हूँ कई सालों से तो ऐसा नहीं है मैं चुनकर छोड़ दिया, सागर में नैया डाल दूंगा उनको मजाक नहीं छोड़ा मैंने,
1: जी
0: तो खैर देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2011 मैंने अपनी क्लिनिक बंद की और उसके बाद

उनके ऑडिशंस में वो चयनित हुई। जो चोर का जिसने रोल किया है अभिषेक जो है ना, वो चित्रकूट से ही कास्ट किया उसको मैंने, उसने पहली बार कैमरा फेस किया है। ज्यादातर जो कोतवाली वाले सीन के सारे एक्टर्स जो ना वो वहीं से लोकली चयनित किए गए हैं। जो ट्रेन सीक्वेंस में जो इंग्लिश एक्टर्स हैं वो सारे रशियंस हैं, और उसमें तीन जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों के तीनों एक अल्बिनो हैं, और वहीं के लोकल हलवाई वलवाई पकड़ लेके आके हमने उनको उनसे एक्टिंग कराई है, जो पता नहीं चलता है आपको। तो बहुत कास्टिंग के लेवल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। शोभना सत्य जो है ना वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरी लीड कास्ट की तबीयत खराब हो जाती है और वो

0: संघर्ष चल रहा था उस समय कौन सी प्रेरणा आपको आगे बढ़ा रही थी?
1: आई थिंक वो एक आपकी जो क्या होता है, कभी भी अपने जीवन को यदि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लें तो फिर वो सब चलता रहता है। फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैसे कमाने का या नाम कमाने का जरिया नहीं है,

0: चले गए। तो उनके साथ में जर्नी कंसिस्टेंटली जो ना हमारे दोनों के बीच में एक वो भी है कि हम एक दूसरे से सलाह भी बहुत लेते हैं। तो वो मेरे सलाहकार भी हैं बहुत समय से, और मैं भी इनका सलाहकार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं
1: जी
0: ऐसे सिर्फ सलाह लेते हैं। फिर मैं डॉक्टर हूँ इनका,

0: क्षेत्र उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जो है ना,
1: वाह क्या बात है। और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो उत्तराखंड है और कैची धाम
0: कैची
1: है,
0: धाम
1: क्योंकि
0: है,
1: आपने कई बार
0: धाम
1: अभिनय
0: भी दिखा
1: किया है
0: तो वही आपने
1: उसमें।
0: कहा। वो अग्नाशम
1: वाह।
0: कुंड है जहाँ पे यक्ष का दुष्टों का संवाद हुआ था, वो धारकुंडी नाम का एक आश्रम है जो चित्रकूट के डीप इन जंगल्स है, जहाँ पे तेंदुए और
1: जी जी
0: दुनिया भर के वो सब हमारे

आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंगल, तकनीकी सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: और विविध भारती आपको एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, और क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया? विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन बाबत, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहली बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू संगीतकार उत्तम सिंह मदर एक प्रेम कथा दास्तान बेमिसाल संगीत की एक उत्तम जीवन की कहानी यानी उनकी यादों की संगीतकार उत्तम सिंह के साथ।

깊게쉬었다오고라디오에기분다생각나왔을까한번해앞미희두니아메바르바르순아이데티해키시키아와즈자니펴자니시아와즈함팔렛카데이크테해토파테해코이미히해아스파스피르비एक एहसास है जैसे है वो कहीं आसपास इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम

दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो, कहीं दूर चले चले वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पलके झपकाए तो फूलों की क्यारियां लहलहा उठे, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे। दुनिया की तलखी से चलो कहीं।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी, इसी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। चलो बनाए ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट ले, बांट ले गम, बांट ले आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट ले आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुम्हें ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्हें ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था, और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था, और दो चेहरों के

खिड़की से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली मन की डायरी, तो जगमगा उठी वो तस्वीरें, जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलते हुए ट्रेन पर दौड़ कर चढ़ने की कोशिश की थी, एक दूसरे का हाथ थामा था, दिखाई थी तमाम तस्वीरें एक दूसरे को, जब यूं ही सड़कों पर खाली बेमकसद चलते रहते थे, याद आ गए वे पल जब यूं ही बैठे चुपचाप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे।

किलों के प्रीत जमाने के लिए कहानी बन गई। बहती हुई नदी का किनारा, लहरों का खेल करता समंदर, आसमान की बुलंदियों को छूते पहाड़, दो चाहने वाले के हमदम बन गए। उनके बोलने से कायनात खनक उठी, उनकी हंसी बहता हुआ झरना बन गई। उनसे गुफ्तगू जैसे फूलों का खिलना हो, उन्हें देखना जैसे चांद को निहारना हो।

सुनाई विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

श्रोताओं, अब यह गाना हमने लिया है हर्षदीप कौर और बीनू दयाल की आवाजों में। गीतकार हैं अनविता दत्त और संगीतकार हैं विशाल शेखर। फिल्म का नाम है बैंग बैंग।

0: ये है विविध भारती, विविध भारती देश का रेडियो।
1: जाहिर हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
0: चाहे हो मनभावनी बातें।
2: एक्टर बनने का शौक में हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। और जी मैंने भरी धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल है हाँ।
0: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
1: आज के फनकार विविध भारती हर रोज लाते हैं ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन। विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधता।
0: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीले ढाकन से भी आप सुनिए कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए सिद्धांत माधव और पवनी पांडे की आवाजों में वेलकम बैक फिल्म का ये गाना।

0: Yani Akashvani Turak, Natum Sengapa Sakanti Kondal Nignigpa Transmission Onaram Chaksuan Baksa Sakantinan Atamnam. Tal Hazagni Kogutok Dosini, October Jani Chibri Tarik Budpa Tamoa. Aru Ya Stationani Program Nanko, Nasimang Rachagni Chotrigitam Point Gitam Sa Meter Medium Wave, Bahajalsa Rachagni Kolachigitam Kilohertzuk Natum Sona Matninga. Tal Jojo Nasimang Na Program Nanko Somayang Baksa Sul Sul Yatangen. Dok baji minit bawa o silongani acek kobor, dok baji minit si bawa o isongan ruk matelani git rangkok kat matani semuanya, Webster moment aru uni dolni tari geman git rangkok na solaman gen. Dok baji minit kolatio Daalo District Level Celebration of World Tobacco Day hajalgani kubuk dok. Turani District Auditorium mo manyani radio report kok na solaman gen. Sni baji Toki House program o deng tang Hindi film ni git rangkok na solaman gen. Sni baji minit kolatio Vivid Bharati. Chet baji Delhi Hindi kobor, chet baji minit bawa o English kobor, chet baji minit kungo Western music program o Bon Jovi aro Ronan Keating ge trangkok na solaman gen, chet baji minit kolatio kalsusane koborang, chet baji minit sotpri bawa Hindi kobor, sku baji English kobor, sku baji minit bawa spotlight program, sku baji minit kolatio Vivid Bharati, chkung baji Hindi kobor, chkung baji minit bawa o English kobor, chkung baji minit kungo Vivid Bharati program kok na solaman gen, yarangan dalatam na tari soguman program na o Dao, Dikdiksani Jamana Naksimang Shilongani Atikoboko Kenasona Mangin Yan Akashvani Tura
1: Ayo, Ruga, my name is not aware of the Kudakin screen.
2: Plus option for me, right?
1: Yeah, plus option for me. Plus option for me.
2: Mama, Siana, Jim Salon, Arch, Hamilton, Kucha, the Emiko, Lakat Kupa, Marakat Kupa, Aru Chunga, Vitamin Rang, Jaon, Mandani, Chamsian, Kubi, Yata, Aru, the Emi, Lanku, and Hata. Unigam, such Hamilton, Kubi, plus option, Lang, Pakusa, Bibu, Uno, Vitamin, Aru, Ayan, the Emi, Lanku, Marakatna, Aru, and Sing, Azuka, Kina, Tach, Hamibus, Chuanku, Bri, plus option, Lang, Pakusa, Bibu, Yaku, Commissioner of Food Safety, Marash, Long, Water.
3: पापा की जनापूंजी उनकी सीख
4: और हमेशा हमारी फिक्र करना वैसे उनकी एक जनापूंजी बैंक में भी है
3: और क्लेम करना मुश्किल होगा
4: अब और भी आसान हो गया है बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जा क्लेम फॉर्म भरो डॉक्यूमेंट्स जमा करो 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान
5: अब ये करता है
4: जानकारी फोन करिए
6: Let's listen to some stories of insurance.
7: That day, Mr. Hardy returned home from his office with Mr. Duggal to find the door wide open. Everything was in disarray. TV, fridge, jewelry, all gone. A lifetime of savings wiped out in one night. Placing a hand on Mr. Duggal's shoulder, Mr. Hardy said, You gave the right advice, Duggalji.
8: Achha kiya. Home insurance liya. The losses from the theft, now insurance will cover it.
6: In tough times, everyone says the same thing. Achukia Insurance Lia. Visit achukiainsurancelia.com. An insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.
9: Achukia Insurance Lia.
10: सर 5000 रुपए लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट
11: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है इसलिए
12: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI
11: आपका साइबर रक्षक
10: सर 5000 रुपए लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट
11: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है इसलिए
12: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI
11: आपका साइबर रक्षक
13: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: दाउदिक दिक्सानी जमानों ने सीमांग शिलोंगों ने बतात कबा अच्छे खबर को खुना सोना मंगेन यन आकाशवाणी टूरा।

사랑하기만 익숙한 인상.

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

लता मंगेशकर नी रंगपा शामिली फिल्म नी मेघा चाहिए आधी रात गीत को खना सोना मन हा दाउ नासीमंग ना मंगपंग गीत को गमन तंग्स का गेन गीत उंगेगा दो नेना और एक कहानी आरो यान आराती मुखर्जी नी रंगपा मासूम फिल्म नी गीत उंगा।

0: टीम किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, और कार्यक्रम चल रहा है फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में हम आपके ही कौन, इस फिल्म का गाना।
1: Let's start the fun!

Rita, meu Ricardo, peça, mediado. E

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भवन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

से जो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारतीय राष्ट्रों सेवा देश के सुरीले धड़कन से अभी आप सुनिए कार्यक्रम जय माला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए मंच म्यूजिक कार्बी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज सुनकर लगाना तनिष्क बागची और आत्मी सहारा के बोल और इसके धुन बनाइए तनिष्क बागची मंच म्यूजिक और अपनी सहारा ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: शोरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
1: फौजी साथियों, अब आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे

0: रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे वहां रहे, उसकी अनुभूतियों पर आप वो पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी, हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। श्रोताओं, लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गाना। गीतकार हैं हंसराज जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। ये गाना राग देश पर आधारित है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपए होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमई को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श किया। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत नागरिक

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं खेल जगत की हलचल और ताजा गतिविधियों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार और मेरे साथ हैं अतर सईद। अतर नमस्कार।
1: नमस्कार प्रशांत, और सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आज हम चर्चा करेंगे देश दुनिया की प्रमुख खेल खबरों, क्रिकेट के रोमांच और मैदानों से मिल रही ताजा जानकारियों की। तो आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक प्रमुख खेल सुर्खियों के साथ।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला जारी।
1: श्रेयस अय्यर ICC की ताजा T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एशियाई खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे।
1: और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता। शुरुआत करेंगे क्रिकेट के साथ। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्रशांत, मैच की ताजा स्थिति क्या है, यहाँ से हम अपनी चर्चा का आगाज करते हैं।
0: अतः 18वां ओवर चल रहा है। वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 208 रन बना लिए और कप्तान शेन वॉर्न ने 44 गेंद पर 83 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ सरफेन रदरफोर्ड 16 गेंद पर 31 रन बनाकर दे रहे हैं।
1: इसका मतलब ये लगता है कि आधार मजबूत हो चला है वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी का, जहां तक प्रश्न है। तो प्रशांत, अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर मैच में किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है?
0: देखिए, अगर इस पूरी श्रृंखला की अगर बात की जाए तो वेस्टइंडीज ने 250 रन भी चेस किए हैं दूसरे ही T20 मैच जो रांची में खेला गया था, और ऐसा दर्शा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि जो T20 का जो ये टारगेट है वो 240 की ओर ज्यादा नजर आ रहा है। तो उम्मीद की जाए कि जिस तरीके से, जिस सशक्त तरीके से अभिषेक शर्मा हो गए या फिर ईशान किशन हो गए या फिर श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों का कप्तान है भारत के, उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद करेंगे कि भारतीय बल्लेबाज जो भी टारगेट हो उसको आसानी से चेस कर लेंगे।
1: सही कहा आपने, श्रेयस अय्यर के बारे में तो हमारे पास एक समाचार भी है जिसको हम अभी साझा करेंगे कुछ देर के बाद। लेकिन आज के मैच में प्रशांत, टॉस जीतकर भारत का गेंदबाजी चुनना और बाद में बल्लेबाजी करने का फैसला करना, हैदराबाद की पिच के हिसाब से आपको कैसा लगता है, साथ में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है जहां तक रात का प्रश्न है?
0: बिल्कुल, अतः अगर देखा जाए, अगर इस T20 श्रृंखला की पूरी बात की जाए, चाहे वेस्टइंडीज हो या भारत हो, वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी श्रृंखला में ये देखने को मिला है कि टारगेट कोई भी हो, बल्लेबाजी क्रम अपने आप को बैक करती है और उस टारगेट को चेस करती है। यही ध्यान में रखते हुए भारत ने आज टॉस भी जीता है, उसी आधार पर वो गेंदबाजी कर रही है ताकि जो भी बल्लेबाजी में उन्हें टारगेट मिले उसे चेस कर लेंगे।
1: यानी लक्ष्य का पीछा करने में हमें ज्यादा कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से फायदा होता है और साथ में हमारे जो स्थानीय दर्शक है उनका भी हमें फायदा मिलने वाला है, और साथ में ये मनोवैज्ञानिक जो एक हमारे ऊपर हमारे साथ सकारात्मक पहलू है कि हम 2-1 की बढ़त हासिल कर चुके हैं। प्रशांत, यहाँ से एक प्रश्न और निकलता है कि क्या भारत 2-1 की बढ़त को 3-1 में परिवर्तित करने वाला है या फिर वेस्टइंडीज 2-2 से श्रृंखला बराबर करेगा, या भारत 3-1 से न सिर्फ बढ़त हासिल करेगा बल्कि श्रृंखला पर भी अपना कब्जा करेगा?
0: ये देखना दिलचस्प होगा आतर, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया इस श्रृंखला से, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आज किस तरह का प्रदर्शन रहता है, और उम्मीद की जाए कि आज ही भारत इस श्रृंखला को अपने नाम कर लेगा और 3-1 की बढ़त बना लेगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ICC रैंकिंग की।
0: जी, आप जैसा बातें कर रहे थे अतर, कि श्रेयस अय्यर से संबंधित हमारे पास एक अच्छी खबर है। भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ICC की ताजा T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए। ये उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी 5 मैचों की घरेलू श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बदौलत T20 के कप्तान श्रेयस अय्यर को ICC की ताजा T20 रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है। अय्यर ने लखनऊ में सीरीज के पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली थी। ये उनके T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी रहा। शतकीय पारी का फायदा अय्यर को रैंकिंग में भी मिला है। उनके चौथे स्थान पर पहुंचने का मतलब है कि अब भारत के 3 खिलाड़ी टॉप 4 में शामिल हो गए। ईशान किशन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं, जब जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर काबिज। और ये दर्शाता है अतर कहीं ना कहीं जो आप सवाल आपने पूछा था कि चार भारत के बल्लेबाज जो टॉप 10 की रैंकिंग में, तो ये दर्शाता है कि वेस्ट इंडीज आज कोई भी टारगेट भारत के लिए सेट करे, हम सशक्त तरीके से उसे चेस कर लेंगे।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की ही बात को जारी रखते हैं। क्रिकेट का एक समाचार और है, बंगाल ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करते हुए दिल्ली को चौथे और अंतिम दिन 9 विकेट से हरा दिया है। अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 101 रन से आगे खेलते हुए दिल्ली की टीम 106 ओवर और 2 गेंद में 277 रन पर आउट हो गई। कप्तान आयुष बडोनी ने 134 गेंद में 85 रन बनाए जिसमें 10 चौके शामिल है। विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज रावत ने 76 गेंद में 39 रनों का योगदान किया। तो ये तो बात हुई दिल्ली और बंगाल के बीच खेले गए रणजी मुकाबले के। प्रशांत, रणजी ट्रॉफी के शेष मुकाबलों की स्थिति आज क्या रही?
0: अध्याय अगर ग्रुप ए के मुकाबलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने 267 रन से मुकाबले को जीत लिया बिहार को हराकर। वहीं ग्रुप सी के मुकाबले में बंगाल ने 9 विकेट से जीत दर्ज की है। ग्रुप सी के मुकाबले में झारखंड और केरला का जो मैच रहा वो ड्रॉ हो गया। वहीं बड़ौदा और गोवा के मैच की अगर बात की जाए तो बड़ौदा ने 135 रन से मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। वहीं मुंबई और चंडीगढ़ में मुंबई ने 155 रन से मुकाबले को जीता। और ग्रुप डी के मुकाबलों की भी बात कर लेते हैं तो जहां राजस्थान और तमिलनाडु के बीच का मुकाबला ड्रॉ हो गया है। और ग्रुप डी में एक और मुकाबला खेला गया जहां रेलवेज और उत्तराखंड का भी मुकाबला ड्रॉ हो गया। ग्रुप डी में एक अन्य मुकाबले में हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को 7 विकेट से हराया। वहीं ग्रुप सी के मुकाबले में जो महाराष्ट्र है उन्होंने सर्विसेज को 127 रन से मात दी। वहीं गुजरात ने उड़ीसा को 10 विकेट से हराकर एक प्रतिष्ठित बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच जो मुकाबला खेला गया वो ड्रॉ हुआ। सौराष्ट्र में रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और शतक भी लगाया था। वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला ड्रॉ हुआ। ग्रुप बी के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं जहां त्रिपुरा और हैदराबाद के बीच जो मुकाबला खेला गया था जिसमें हैदराबाद ने 40 रन से जीत दर्ज की। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में विदर्भ और पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो विदर्भ ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 160 रन से मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
1: अब लगे हाथ अंक तालिका की ताजा स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। प्रशांत,
0: जैसे कि हम सबको बताया ये जो रणजी ट्रॉफी हो रही अलग अलग श्रेणियों में हो रही है, तो ग्रुप ए की अगर बात करें तो बड़ौदा जो है स्टेट्स पर है 7 पॉइंट के साथ, एक मुकाबला उन्होंने अपने नाम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश और विदर्भ ने अपने अपने मुकाबले जीते जिसके कारण उन्हें 6 पॉइंट मिला है। वहीं मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर का मुकाबला ड्रॉ हुआ। ग्रुप बी की अगर बात की जाए तो हैदराबाद ने पहला मुकाबला जीता जिसके कारण उन्हें 7 पॉइंट मिला। वहीं पंजाब सौराष्ट्र आंध्र प्रदेश असम का मुकाबला ड्रॉ हुआ जिसके कारण वो 3 अंक के साथ बने हुए हैं। वहीं कर्नाटक छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा अपने अपने मुकाबले हार गए। ग्रुप सी की अगर बात की जाए अतर तो गुजरात महाराष्ट्र ने अपने अपने मुकाबले जीते, झारखंड का मुकाबला ड्रॉ हुआ, दिल्ली और उड़ीसा अपने अपने मुकाबले हार गए। ग्रुप डी में हरियाणा और मुंबई ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
1: और अब चलते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम लगभग 4:30 बजे होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। जापान के आईची नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक यानी 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया, जो विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
2: So we've got gold with a gold in the women's individual track event. This is absolutely fantastic.
3: There's the touch and it goes. She gets it. Pranavi Short overs. Even par on the day. 15 under. She finishes overall India's first gold medal winner in golf.
1: तो प्रशांत, कल एक शानदार आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने जा रहा है। अभी देखते हैं प्रशांत कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय खेलों में और खिलाड़ियों में हमेशा अपनी रुचि का इजहार करते हैं। जब जब हमारे खिलाड़ी विश्व पटल पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और जिसका परिणाम ये निकलता है कि हमारे खिलाड़ी और नई ऊर्जा के साथ, नए हौसलों के साथ शानदार प्रदर्शन करते हैं और बड़ी प्रतियोगिताओं में भारत का मान बढ़ाते हैं। बिल्कुल अतर है ना, तो ये एक बहुत अच्छी पहल कहूंगा, बल्कि ये बहुत अच्छा क्रम शुरू हो गया है और इसका नतीजा हम देखते हैं कि तमाम खेल स्पर्धाओं में हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देखने को आ रहा है। एशियाई खेलों की तरफ बात करें तो प्रशांत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि भारत को सर्वाधिक किस स्पर्धा में सर्वाधिक 100 पदक हासिल हुए।
0: अगर आर्चरी की बात की जाए अधर, तो भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आर्चरी में 5 स्वर्ण पदक जीते और खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो भारत ने एक तो टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, कंपाउंड टीम फाइनल्स में उन्होंने जीता, वुमेन्स हो मेंस हो दोनों कैटेगरी में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लेकिन रिकर्व वुमेन्स इंडिविजुअल स्पर्धा में अगर हम बात करें तो कुमकुम मुहोद ने भारत को स्वर्ण पदक जिताया, उन्होंने रिकर्व वुमेन टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता और कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भी भारत को पदक दिलाया। लेकिन रजत पदक की अगर बात की जाए तो पुरुष टीम ने भी भारत को रजत पदक दिलाया और मिक्स टीम स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक जीता है।
1: अच्छा, एक सवाल और यहाँ से निकलता है
0: जी,
1: सर्वाधिक किस स्पर्धा में भारत को पदक हासिल हुए हैं, यानी किस स्पर्धा में सबसे ज्यादा पदक हमने अपने नाम किए हैं, अपने देश के नाम किए हैं?
0: सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी एथलेटिक्स से और ऐसा ही परिणाम हमें देखने को मिला है। 24 पदक भारत ने जीते हैं जिनमें 1 स्वर्ण, 9 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल थे। अगर अगर हम खिलाड़ियों की बात की जाए तो जो गोल्ड आया है भारत का, जो एक गोल्ड आया है वो 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में आया है, जहां भारत ने टीम स्पर्धा में जो है गोल्ड पदक जीता था। इसके बाद जो गुणवीर सिंह है उन्होंने भारत को पुरुष 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में सिल्वर मेडल दिलाया है। अगर गुणवीर सिंह ने 500 मीटर की 1500 मीटर की स्पर्धा में भी भारत को रजत दिलाया, वही सर्वेश सारे जो है उन्होंने हाई जंप में भारत को पदक दिलाए, यशवीर सिंह हो गए, मुरली श्रीशंकर हो गए, सावन बरवाल हो गए, या फिर सिंह तो हो गए जी बिल्कुल,
1: और सूजन हो गए। इसके अलावा उन्होंने महिला लॉन्ग जंप में ये सिल्वर पदक दिलवाया भारत को, सिल्वर मेडल, और 4x4 में रिले में भी जी मिक्स जो स्पर्धा थी उसमें भी हमें रजत पदक हासिल हुआ। तो इस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन रहा जहां तक भारत के एथलेटिक्स का प्रश्न है।
0: और शूटिंग में भी अगर अथर बात की जाए तो भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्या कुछ रहा शूटिंग में भारत का?
1: शूटिंग में अच्छा प्रदर्शन रहा, 3 हमें स्वर्ण पदक मिले, 8 रजत पदक मिले, 4 कांस्य पदक, मिलाकर अगर हम गिनती करें तो 15 पदक हमें शूटिंग से मिले हैं। अगर व्यक्तिगत बात करें तो स्वर्ण पदक की बात करें तो ये स्वर्ण पदक हमें नीरू ने दिलाया,
0: नीरू भांडा ने अच्छा प्रदर्शन किया जी,
1: बिल्कुल उन्होंने ट्रैप स्पर्धा में ये पदक हमारे नाम किया। और दूसरा पदक हमें मिला 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में, और तीसरा पदक हमें मिला ट्रैप मिक्स टीम में। तो भारत को कुल मिलाकर ये पदक हासिल हुआ, 100 पदक का यहाँ तक प्रश्न है। और इसके अलावा सिल्वर पदक की अगर हम बात करें, सिल्वर मेडल कहाँ से मिले?
0: सिल्वर मेडल भी अलग अलग स्पर्धाओं में हिमांशु ढिल्लों ने भारत को दिलाया, बेलवन एलेवन सेंथिल कुमार ने दिलाया, ईशा सिंह ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अतर
1: इसके अलावा हम हॉकी की चर्चा जरूर करेंगे, हॉकी में हमने दोनों 100 पदक हासिल किए।
0: हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, सब में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया है।
1: आगे बढ़ते हैं, भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने पराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर

स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता और आनंद कुमार के बीच समय का अंतर मात्र 4 मिली सेकेंड का था। और चलते चलते आकर एक बार फिर क्रिकेट के मैदान की ओर नजर डाल लेते हैं, जहां अंतिम ओवर का चल रहा है मुकाबला और वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 235 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैम्प में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैम्प की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है। और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांग जनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, उसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, समय समय इसको सपोर्ट कर सके। इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान

0: चल रहा है। रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सूर्य इंद्र से जुड़ता पहले जानकारी के लिए सूर्य इंद्र से विस्तृत विजिट कीजिए समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा के विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी है वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनकी हवाई जहाजी कंपनियां हैं वो फ्लाइट चल रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा का मूल मंत्र जन सेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्ति

0: के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
1: देश आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद मनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
0: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
2: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार है और निदेशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज है।
0: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
4: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का वृद्धिकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर।
3: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। आज दीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में 4th T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम मिस्टर विलियम्स विद न्यूज एट 9. The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress in ties with focus on trade, energy and security. India calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before the rally. India's Anand Kumar Vail Kumar wins silver medal in men's 1,000-meter sprint at World Skating Games in Paraguay. And in men's cricket, 4th T20 international between India and West Indies underway in Hyderabad. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. The approval also includes renaming of the scheme and its sub-schemes, along with revisions to the eligibility criteria, coverage and rates of assistance for disability pension beneficiaries. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above. He said the benchmark disability criterion for eligibility will be reduced from 80% to 40%.
6: दिव्यांगजनों के लिए द एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड फॉर डिसेबिलिटी पेंशन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 80% टू 40%। दिस मींस दैट पर्संस विद डिसेबिलिटीज विद अ 40% डिसेबिलिटी विल नाउ आल्सो बी एलिजिबल फॉर द पेंशन। अर्लियर डिसेबिलिटी पेंशन वाज प्रोवाइडेड ओनली टू इंडिविजुअल्स अबव द एज ऑफ 18। नाउ पर्संस विद डिसेबिलिटीज विल बी एलिजिबल फॉर द पेंशन फ्रॉम बर्थ। द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद अप्रोक्सीमेटली 27 लाख पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अंडर दिस पेंशन स्कीम।
5: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The Union Minister said the government has also given the nod to the strategic restructuring of IDBI Bank.
7: IDBI ki strategic restructuring.
6: A decision has been taken to undertake the strategic restructuring of IDBI Bank. As India continues to grow rapidly, there is a significant need for growth capital. We need more institutions that can provide growth capital and support micro, small and medium enterprises. Therefore, a strategic partner has been selected for IDBI Bank. With the support of this strategic partner, fresh capital will be infused into the bank. This decision has paved the way for what could be the largest FDI in India's financial service sector.
5: Mr. Vaishnav said the cabinet has also cleared a productivity

फिल्म में हम हीरो हीरोइंस को एक से बढ़कर एक सजीली पोशाक पहने हुए दिखते हैं, और कभी भी हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन पोशाकों को डिजाइन कौन करता होगा, कहानी और पटकथा के अनुरूप इन वेशभूषाओं को कौन व्यवस्थित करके हीरो हीरोइन के लिए तैयार करवाता होगा। ये काम कॉस्ट्यूम डिजाइनर का होता है, और आज एक बहुत ही मशहूर और महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त यूनुस खान, और इस कार्यक्रम में लेकर आया हूँ बातें।

0: सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: आज कल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने भानु अपने का नाम लिया और उसके बाद गाना बजा फिल्म घूम जाने का, आखिर ये माजरा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1969 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने में मुमताज ने जो ऑरेंज कैंडी कलर की घुटनों तक प्री प्लेटेड साड़ी पहनी थी उसे भानु अथैया ने डिजाइन किया था, और कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि इस गाने की जो शानदार कोरियोग्राफी थी उसमें थिरकने में मुमताज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो सजीले बांके नौजवान शम्मी कपूर के साथ थिरकते हुए गा सके।

0: के चलते हर जवान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई
1: तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर जवान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: वाकई मालूम होता है कि डिजाइन इस ड्रेस में मुमताज की शोख अदाओं ने लोगों का दिल चुरा लिया और हर जबान पर चर्चा आ गई। हिंदी फिल्मों का ये एक ऐसा गाना है जिसे हम कभी भी और कहीं भी देखना और सुनना पसंद करते हैं। दरअसल मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर इस ड्रेस की डिजाइनर भानु अथैया की यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा साल 1929 की तरफ, महाराष्ट्र का शहर कोल्हापुर, जहाँ एक बालिका ने 28 अप्रैल 1929 को जन्म लिया। नाम रखा गया भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय। जी हाँ, भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय, क्योंकि पिता का नाम था अन्ना साहेब और माता का नाम था शांताबाई राजोपाध्याय। अपने माता पिता की 7 संतानों में भानुमती तीसरे नंबर पर थी। आजादी के पहले का दौर था, लड़कियों की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था, पर भानुमती के माता पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। उसकी रुचियों को देखते हुए और उसके टैलेंट को देखते हुए आगे चलकर भानुमती को भेजा गया मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा लेने के लिए। यहाँ से भानुमती गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हो गई। जरा सोचिए कि समय कैसी करवट लेता है। बचपन में माता पिता ने देखा कि भानुमती रेखा चित्र बनाती हैं। आजादी के पहले का समय था तो माता पिता ने कहा कि तुमको गांधी जी का रेखा चित्र बनाना चाहिए। भानुमती ने बचपन में ऐसा ही किया था। और जरा सोचिए कि आगे चलकर भानुमती भानु अथैया बनी और सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया।

0: सत्येंद्र अथैया से हुआ था, जो एक कवि और गीतकार थे। ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया, पर भानु अथैया ने आगे विवाह नहीं किया। भानु अथैया ने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की यात्रा सन 1953 में शुरू की थी फिल्म CID के जरिए।
1: चाहे कोई चमचे भी, चाहे कोई परसे, बस ना हम सीखे।

0: घर भर के आंखों में तुम्हार जादू नगरी आया है कोई जादू घर लेके चलना पहला चार।
1: इसकी बात तो हिंदी सिनेमा में ड्रेस डिजाइनिंग को लेकर उन्होंने एक नई क्रांति ला दी। किसी जमाने में भानु अथैया महिलाओं की पत्रिकाओं के लिए फैशन विशेषज्ञ के रूप में काम करती थी, फिर वो परिधान डिजाइनिंग यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में आ गई। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 का नगमा। ये फिल्म आपने देखी ही होगी, इसलिए आंखें बंद करके याद कीजिए इस गाने में थिरकती हुई नादिरा को, जिनके लिए गाउन तैयार किया था भानु अथैया ने ही। और ये कॉस्ट्यूम कितनी बड़ी हिट हुई थी उस दौर में जीने वाले लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

बानो अथरिया ने अपने इंटरव्यूज में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था जबकि डायरेक्टर सेट डिजाइनर और किसी टेलर को लेकर बैठ जाते थे और स्टोरी के मुताबिक कपड़े सिलवा लिया करते थे, लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आई तो मैंने ड्रेस डिजाइनिंग को एक पेशेवर रूप दिया। डायरेक्टर्स की बात सुनकर मैंने स्केचेस बनाना शुरू किया और एक्टर्स की पर्सनालिटी और कहानी की मांग के मुताबिक ड्रेस तैयार करना शुरू किया। अब जरा फिल्म वक्त को याद करते हैं। साधना ने फिल्म वक्त में एक खास ड्रेस पहनी थी, घुटनों तक ट्यूनिक और लाइक्रा लेगिंग स्टाइल वाली चूड़ीदार पजामे वाली ये ड्रेस लोगों के बीच बहुत मशहूर हुई और लड़कियों ने इसे अपनाकर उस जमाने का फैशन बना दिया था। कुछ फेर बदल के साथ आज भी इस तरह की पोशाक चलन में नजर आती है। तो फिल्म वक्त का साधना पर फिल्माया गया ये गाना सुनिए।

अब जरा फिल्म आम्रपाली की बात कर ली जाए। फिल्म आम्रपाली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था। ये कहा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करना एक चुनौती थी। भानुअथैया ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग से प्रेरणा ली। बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहने जाने वाले हल्के गेरुए रंग के कपड़ों को डिजाइन करना आसान नहीं था। इस दौरान इन कपड़ों को पारिजात के फूलों के रंग में रंगा जाता था। इस फिल्म में आम्रपाली का किरदार निभाया था वैजयंती माला ने, और उन्होंने जो पोशाकें इस फिल्म में पहनी उनको भानुअथैया ने बड़ा सोच समझकर डिजाइन किया था। कुछ इस तरह से कि स्किन फिटेड ड्रेस होने के बावजूद ये भद्दी न लगे, कहानी के अनुरूप उनमें एक गरिमा हो, एक थसक हो और एक सजीलापन हो। इसी फिल्म में सुनील दत्त ने मगध के सम्राट का किरदार निभाया था और भानुअथैया ने उनके लिए क्लासिक धोती तैयार की थी। फिल्म आम्रपाली अपनी कथावस्तु वैजयंती माला के अभिनय और उनके नृत्यों के साथ साथ शंकर जयकिशन के संगीत के लिए भी याद की जाती है, और बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि फिल्म आम्रपाली को सजाने में एक बड़ा योगदान था भानुअथैया का।

मानो अथैया की ड्रेस से सजी हुई कई फिल्में आपने देखी होंगी। पता नहीं आपका ध्यान इन फिल्मों में हीरो हीरोइन की पोशाकों पर गया या नहीं गया। सन 1956 में सीआईडी, सन 1959 में प्यासा, सन 1960 वहीदा रहमान की खूबसूरती से जगमगा गई सेलुलॉइड की स्क्रीन और इस फिल्म की पोशाकें तैयार की थी भानु अथैया ने और लोग कह उठे।

ज्यादा होती है कि खासियत ये थी कि वो फिल्म के किरदारों और कथानक को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती रही। फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने राजस्थान की पृष्ठभूमि की कमाल की पोशाकें तैयार की।

0: सन 1990 में एक बार फिर से राजस्थानी पृष्ठभूमि की पोशाकें तैयार करने का उन्हें मौका मिला। इस बार फिल्म थी गुलजार निर्देशित लेकिन
1: टूटी

साल 1964 की तरफ लौटते हैं। वैजयंती माला, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, फिल्म संगम। इस फिल्म के लिए करीब सिल्क की साड़ियां वैजयंती माला के लिए चुनी गई। जरा इस गाने को याद कीजिए, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, शंकर जी किशन की धुन और मुकेश की आवाज, साथ में लता मंगेशकर।

फिल्म राम तेरी गंगा मैली हूँ या फिल्म मेरा नाम चूपर, इन फिल्मों की ड्रेस डिजाइनिंग के पीछे भानु अथैया की प्रतिभा थी। कमाल अंदोही की फिल्म रजिया सुल्तान के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम

बाद वो फिल्म गांधी की बात कर ली जाए। फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का मौका मिला था भानु अथैया को। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए बाकायदा ऑडिशन और टेस्ट लिया गया था और दुनिया भर के लोगों में से भानु अथैया को चुना गया फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने और वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हस्ती बन गई थी। इसके बाद भी भानु अथैया की कला जारी रही थी। आपको बता दें कि जब आमिर खान ने फिल्म लगान बनाई तो उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भानु अथैया को ही सौंपा था। आजादी के पहले का परिदृश्य और ग्रामीण किरदार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से वो इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी। खासतौर पर उन्हें ये ध्यान रखना था कि फिल्म में ग्रामीण गरीब किरदार हैं जो आजादी के पहले के समय के हैं। खूब रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिल्म लगान के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार की थी।

आशुतोष गोवारीकर की फिल्म स्वदेश के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु पथैया ने किया था। भानु पथैया को गुलजार की फिल्म लेकिन और आशुतोष गोवारीकर की फिल्म लगान के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का नेशनल अवार्ड भी मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की अपनी इस पूरी यात्रा को उन्होंने एक किताब में संजोया है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। परिधान डिजाइनिंग के शौकीनों के लिए ये किताब किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ से कम नहीं है। अक्टूबर साल 2020 भानु अथैया एक खौफनाक बीमारी से जूझ रही थी। इससे पहले फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान उन्हें लकवा भी लग गया था। उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। 15 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भारत की एक सबसे प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर इस दुनिया से विदा जरूर हो गई पर उनका नाम हमेशा रहेगा। जब भी फिल्म गांधी का जिक्र आएगा, ब्रह्मचारी का, स्वदेश का, लगान का, गाइड का, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा या चौधरी का चांद और हिमा जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा, भानु अथैया को लोग याद करते रहेंगे, हमेशा याद करेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में।

0: आज की लेखा ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, और क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया? विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीति साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा के विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होनी चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया जा रहा है। सरकार ने भारत और मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया है। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। आनंद कुमार विल कुमार ने पराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में

करूं? हाँ, मैं रात हूं सहमी हुई। तुम लिख सकते हो मुझ पर कोई कविता? एक रात में कवि कितनी कविताएं लिख लेता है। जब सभी सो जाते हैं, कवि चुपचाप छत पर नंगे पैर आता है रात को निहारने के लिए, है ना? काश तुम भी छत पर आते, मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद। हाँ, मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद।

चाय गीत में आप हैं मंदाकिनी के साथ। कभी कभी सोचती हूं मैं एक हवा हूं, मेरे स्पर्श से रोमांचित हुए हैं पेड़ पहाड़ और कबूतर चिड़िया भी। तुम्हें छूती हूं तो तुम में भर जाती हूं, तड़पती हुई तुम में समा जाना चाहती हूं। मैं तुम्हारे प्यार में सरस सरल बनकर बह रही हूं अनवरत अनवरत अपने ही भीतर, हाँ अपने ही भीतर।

मैं बारिश हूं किसी प्रेम कविता से। धीरे धीरे गिरती बूंदें, बादलों की ओट में छुपा चांद, पहाड़ियों पर उतरती धुंध, मुझसे भीग कर तुम्हारा वो मुस्कुराना, वक्त जैसे थम जाता है, ये भीगी वादियां और तुम्हारा साथ, उफ, सब मिलकर जैसे इश्क की एक नई कहानी बन रही होती है तब। हाँ, एक नई कहानी।

अपनी किताब के पन्नों में मशगूल एक प्रेमी कवि। सोचती हूँ तुम्हारे संग बर्फीली वादियों में खो जाऊं, तुम्हारा हाथ थाम कर चलूं, यूं ही किसी चांदनी रात में दूर तक किसी घने जंगल में खो जाऊं तुम्हारे साथ। हाँ, अच्छा लगता है तुम्हारा ये साथ। वो सर उठाकर बंद आंखों से जाने क्या सोचते हुए बुदबुदाती हो तुम, बहुत अच्छे लगते हो तब। हाँ।